0: Radio 2098.5 FM Community Program.
1: Samajik Hindi Karyakram Darpan Akashvani 2098.5 FM.
0: Welcome to the Hindi Show, featuring news, interviews, music, and community announcements.
1: Swagat hai Darpan Hindi Karyakram mein. Aap sunenge samachar, vichar, sangeet aur samajik suchnaein.
0: Radio 2098.5 FM, Multicultural Radio.
2: आज रविवार युगाब्द 5126 कलयुग विक्रम संवत 2083 श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी 2 अगस्त 2026 है। दर्पण के सभी श्रोताओं को ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव का सप्रेम नमस्कार। अब सुनिए इस सप्ताह के समाचार। मुख्य समाचार इस प्रकार हैं।

0: गालियों से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। जंतर मंतर प्रदर्शन पर पीएम मोदी का नया इंस्टा वीडियो। राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन नोटिस से बड़ी सियासी तल्खी। अनुराग ठाकुर ने लगाया निराधार आरोप लगाने का आरोप। पप्पू यादव बने पुजारी। दान देने पहुंचे राहुल गांधी और दूसरे विपक्षी सांसद। राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर सियासत तेज। कश्मीर में आतंकी हमला करके पीओके के विद्रोह से ध्यान भटकाना चाहता है पाकिस्तान, विशेषज्ञों का बड़ा दावा। जिम्बाब्वे के बाद अब श्रीलंका की बारी। अगले महीने एक्शन में नजर आएगी भारतीय टीम, नोट कर लें शेड्यूल। अब सुनिए समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने इंस्टा वीडियो में कहा, फ्रेंड्स आज तो मन करता है बस आपसे ही बातें करूं। जंतर मंतर पर जो कुछ भी हुआ उसे देश और दुनिया ने देखा। कुछ शरारती तत्वों ने ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया जो किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देती। प्रदर्शन के दौरान मुझे गालियां दी गईं, मेरी स्वर्गीय माँ को भी अपशब्द कहे गए हैं। संसद के मानसून सत्र के बीच कांग्रेस और भाजपा के बीच टकराव और तेज हो गया है। भाजपा सांसद एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर सदन के नियमों का उल्लंघन करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ निराधार और असंसदीय आरोप लगाने का आरोप लगाया है। वहीं भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने भी अनुराग ठाकुर के विशेषाधिकार हनन नोटिस के कदम का समर्थन करते हुए कहा कि राहुल गांधी लंबे समय से बिना तथ्यों के बयान देने की राजनीति करते रहे हैं। श्री राम मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर सरकार को घेर रहे विपक्ष ने शुक्रवार को संसद भवन के बाहर मंदिर चढ़ावा चोरी को लेकर एक स्वांग रचा। इस स्वांग के द्वारा उन्होंने अपना विरोध जताया, जिसमें लोकसभा के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव पुजारी बने थे, जबकि विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी दलों के सांसदों ने उन्हें दान दिया। वहीं बाद में पप्पू यादव ने दान पेटी लेकर भागने का नाटक किया, जिन्हें विपक्षी सांसदों ने तुरंत पकड़ लिया। इस दौरान जुड़े विपक्षी सांसदों ने चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाए। संसद भवन के मकर द्वार के बाहर हुआ यह स्वांग करीब एक घंटे भर चला। कई साधु संतों ने भी राष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष से अपील की है कि पप्पू यादव की सदस्यता रद्द किए जाने की मांग की, जबकि विश्व हिंदू परिषद इस मामले में कानूनी कार्यवाही पर विचार कर रहा है। जम्मू कश्मीर में कुलगाम जिले में शुक्रवार शाम पाकिस्तान समर्थित आतंकियों ने एक प्रवासी मजदूर की गोली मारकर हत्या कर दी और एक अन्य को घायल कर दिया। सुरक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में बढ़ते विरोध प्रदर्शनों से ध्यान हटाने के लिए ऐसा हमला किया गया है। जिम्बाब्वे के खिलाफ जीत के बाद अब भारतीय क्रिकेट टीम अगले एक्शन में नजर आएगी। अगस्त में टीम इंडिया श्रीलंका का दौरा करेगी। इस दौरान दोनों टीमों के बीच दो टेस्ट मैचों की सीरीज खेली जाएगी। इस सीरीज की शुरुआत 15 अगस्त से होगी। सीरीज के पहले भारतीय टीम के लिए अच्छी खबर सामने आई है। श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम शुभमन गिल कप्तान, केएल राहुल उप कप्तान, यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत विकेटकीपर, साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल विकेटकीपर, रविंद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुधार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बराड़, देवदत्त पडिक्कल, सारांश जैन, ये टीम के नाम थे। अब सुनिए वाणिज्य समाचार। इस सप्ताह दिल्ली सर्राफा बाजार बंद होने तक स्टैंडर्ड सोने का भाव रहा 1,32,710 रुपए प्रति 10 ग्राम। यूएस डॉलर की विनिमय दर थी 95.43 रुपए और ऑस्ट्रेलियन डॉलर 67.02 रुपए। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुए।
1: आप सुन रहे हैं दर्पण हिंदी कार्यक्रम रेडियो 2000 98.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज आपके साथ स्टूडियो में हैं ऋचा श्रीवास्तव और सुनील श्रीवास्तव। आज का टॉपिक जो है हम आप लोगों को बताएंगे, डिस्कस करेंगे, वो है कैलाश मानसरोवर यात्रा, एक स्पिरिचुअल जर्नी विथ शोभना शर्मा। और आया सावन झूम के एक स्पेशल फीचर्स, सेलिब्रेटिंग द ब्यूटी ट्रेडिशंस एंड फेस्टिवल्स ऑफ द होली मंथ ऑफ सावन। और हम आपसे एक गेस्ट से मिलवाएंगे आपको, शोभना शर्मा, और दूसरे गेस्ट हमारे होंगे श्री साई परस्तु। ये डिस्कस करेंगे आप लोगों से सेंसस 2026 के बारे में। और आज का टॉपिक ये भी एक होगा कि ए ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफ़ी, रिमेम्बरिंग द लेजेंडरी सिंगर ऑन हिज डेथ एनिवर्सरी थ्रू हिज टाइमलेस मेलोडीज एंड इंस्पायरिंग स्टोरीज। एक रिपोर्ट भी आपको देंगे जो CWG द कॉमनवेल्थ गेम्स चल रहे हैं ग्लासगो में, उसके बारे में आपको बात करेंगे। आज के प्रोग्राम शुरू होने से पहले ऋचा जी से आज का विचार।
2: नमस्कार श्रोताओं, आज का विचार सावन से ही जुड़ा हुआ है, क्योंकि सावन का सच्चा उत्सव केवल झूले और मेहंदी में नहीं, बल्कि अपनों के साथ बिताए पलों और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता में है। तो आइए इससे जुड़ा हुआ विचार सुनते हैं। सावन की हर बूंद हमें याद दिलाती है कि परिवर्तन प्रकृति का नियम है, और हर बरसात के बाद नई हरियाली अवश्य आती है। सावन केवल ऋतु नहीं, एक अनुभूति है, जहां शिव की भक्ति, प्रकृति की सुंदरता और रिश्तों की मिठास एक साथ खिल उठती है। ओम नमः शिवाय।

0: just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: 2OOO's station sponsor.
2: Love authentic curries, but don't have hours to spend in the kitchen? Introducing Curry Masters, the complete curry mix that's ready to cook and packed with authentic flavor. No complicated recipes, no searching for spices. We've done all the hard work for you. Simply add your choice of meat, seafood, vegetables, or paneer and create a delicious restaurant-quality curry in minutes. Proudly Australian made and owned, Curry Masters supplies homes and businesses right across Australia. Make curry night easy with Curry Masters. Authentic flavor made simple. Visit Curry Masters today or your nearest Indian Nepali spice shop and discover your new favorite curry.
3: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश. श्रोताओं, आज हम एक पहली भी ला रहे हैं आप लोगों के लिए, और उसके लिए आज जो है हम एक पास देंगे जिसमें दो टिकट्स होंगे, मतलब दो लोग देख सकते हैं. वो आज मूवी जो है वो बंटवारा 1947, वो जो आने वाली है 15 अगस्त के उपलक्ष्य में. वो उसके डायरेक्टर का क्या नाम है वो आपको हमारे व्हाट्सएप फोरम पे अगर आप हैं तो उसमें आप अपना आंसर बता सकते हैं, और हम 11 बजे के पहले बता देंगे कि कौन विनर है. तो आपको बताना है कि कौन से डायरेक्टर हैं इस मूवी के, जो है बंटवारा 1947, और जो रिलीज हो रही है 15 अगस्त को. तो और ये इसके पहले जो है हम लोग कुछ प्रोग्राम शुरू करते हैं, तो ऋचा जी से सुनिए.
4: जी नमस्कार श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि सावन की शुरुआत हो गई है. 31 जुलाई से श्रावण मास आरंभ हो गया है. आप हमारे साथ एक ऐसे अतिथि से मिलेंगे जो अभी अभी भगवान शिव के परम पावन धाम कैलाश मानसरोवर की दिव्य यात्रा करके लौटी हैं. तो आप सभी को सबसे पहले तो हर हर महादेव. और श्रोताओं, मैं इतनी ज़्यादा अभिभूत हूँ और थोड़ी इमोशनल भी हूँ, क्योंकि अपने आप को शिव भक्त मानती हूँ, छोटा मोटा ही शिव भक्त कहूँगी, क्योंकि अगर सौभाग्य होता तो मैं भी मानसरोवर की यात्रा ज़रूर करती, लेकिन उम्मीद है कभी ना कभी ज़रूर ईश्वर मुझे ये वरदान देंगे. तो आइए, मेरी बात छोड़िए और आपको मिलाते हैं शोभना जी से, शोभना शर्मा जी से, या यूँ कहें कि कैलाशी शोभना जी से. शोभना जी, कैलाशी शोभना जी, आपका दर्पण रेडियो पे बहुत बहुत स्वागत है. नमस्कार, हार्दिक अभिनंदन.
5: थैंक यू सो मच.
4: शोभना जी, कहा जाता है कि जिस श्रद्धालु को कैलाश पर्वत के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो जाता है, उसके नाम के साथ स्वतः ही कैलाशी जुड़ जाता है. ये केवल एक उपाधि नहीं, बल्कि भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा और एक दिव्य अनुभव का प्रतीक मानी जाती है. आइए आज उन अनुभवों के माध्यम से हम भी इस अद्भुत और आध्यात्मिक यात्रा की झलक पाने का प्रयास करते हैं. तो बहुत बहुत धन्यवाद शोभना जी कि आप जो हैं दर्पण स्टूडियो में पधारी हैं. और बिल्कुल अभी आप तुरंत ही, कब लौटी आप यात्रा से?
5: अभी एक हफ्ता ही हुआ.
4: तो बिल्कुल ये ताज़ा आपके मेमोरी में जो है ना ये यात्रा बनी हुई है. तो आपको चरण स्पर्श और जो है आपको बहुत बहुत प्रणाम कि आप शिव धाम करके लौटी हैं, हैं. तो बहुत ही सौभाग्य की बात है. तो सबसे पहले आप इस यात्रा के बारे में बताइए कि कैसे मन में ये विचार आया, और आपको भी लगा कि क्या वो सचमुच बाबा का बुलावा था?
5: बस यही तो बात है ना, मन में विचार ही नहीं आया था.
4: अच्छा.
5: मैंने तो सोचा भी नहीं था कि मैं कैलाश मानसरोवर जाने वाली हूँ.
4: जी.
5: लाइफ एक सीधा रास्ता पे चल रही थी, और अचानक से 26 मई को
4: जी
5: एकदम शार्प राइट टर्न ले लिया
4: अच्छा
5: हाँ तो मैं पंडित देवेन शर्मा की मंदिर गई थी
4: जी
5: ये हिंदू कॉस्मस मंदिर है
4: जी
5: मेरा जन्मदिन था तो मैंने सोचा कि चलो वहां जाके हवन करते हैं
4: जी
5: तो मैं सुबह 4 बजे वहां पहुंच गई
4: अच्छा
5: एंड पर्पस यही था कि मैं हवन करके आरती करके फिर घर वापस आ जाऊंगी
4: जी
5: तो सब कुछ हो गया और आरती के बाद पंडित देवेन शर्मा जी ने मुझे बोला कि हम लोग कैलाश जा रहे हैं व्हाई डोंट यू कम विद अस
4: अच्छा
5: तो तुरंत मेरे मुंह से निकला आई एम सो सॉरी पंडित जी लेकिन मैं नहीं आ पाऊंगी मैं यूरोप जाने की तैयारी कर रही हूं
4: अच्छा
5: तो तुरंत ही मैंने मना कर दिया फिर उन्होंने फिर से मुझे बोला कि यह मेरा आखिरी ट्रिप है कैलाश का और मंदिर से भी बहुत सारे लोग जा रहे थे और अच्छा रहेगा कि इफ यू कम विद अस
4: जी
5: तो फिर से मैंने बहुत पोलाइटली उनको बोला कि आई एम सो सॉरी लेकिन मेरा तो प्लान यूरोप का बन गया है
4: जी
5: तो उन्होंने बोला अच्छा कोई नहीं आप सोचना इसके बारे में सो दैट वाज ऑन द 26th उससे पहले तो हां बहुत साल पहले मैंने सोचा था कि कभी लाइफ में जाऊंगी कैलाश मानसरोवर का दर्शन करूंगी
4: जी
5: लेकिन not this year
4: अच्छा
5: तो फिर मैं वापस घर चली गई और घर जाके मैंने सोचा कि उन्होंने ऐसा बोला है और एक तरह से मुझे ऐसा लगा कि
4: इशारा है जी
5: आप विश्वास नहीं करोगे 26 को मैं वापस घर गई
4: जी
5: और विद इन 12 आवर्स आई हैड ऑलरेडी परचेस माय टिकट
4: वाओ
5: एंड I was going to Kailash.
4: बताइए तो ये ऐसा ही कहते हैं ना चमत्कार मैं तो मानूंगी
5: बिल्कुल बुलावा मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये भगवान का बुलावा था मैंने पंडित जी से भी बोला कि God chose you
4: जी
5: कि आपके वाणी आपके मुंह से वो निकले
4: जी
5: मेरा निमंत्रण जो था मेरा बुलावा जो था अब भगवान स्वयं तो प्रकट नहीं होंगे तो किसी ना किसी को वो चूज करते हैं ना कि चलो इनसे मैं बुलवाता हूं
4: बिल्कुल और शिव कृपा सब पे नहीं होती है शोभना जी आपको बताऊं कि लोग कहते हैं कि मैनिफेस्ट कीजिए तो वो हो जाता है काम तो मैं तो कब से मैनिफेस्ट कर रही हूं कि मुझे
5: इसमें मैनिफेस्टेशन की बात नहीं है इसमें ऐसा है ना कि वो जो चाहते हैं
4: जी
5: वही होता है
4: वो
5: आप सर पटक दोगे आप 1 साल 2 साल 5 साल आप मैनिफेस्ट करते रहोगे
4: जी
5: लेकिन आप चाह करके भी वहां नहीं पहुंच पाओगे
4: जी जी
5: ऐसा मैं मैंने फील किया
4: बिल्कुल सच आपको बताऊं कि मेरे नाना नानी उस समय मेरे ख्याल से 50 वर्ष के रहे होंगे जब उन्होंने अमरनाथ की यात्रा का सोचा एक अनुभव बता रही हूं उनका तो सोचा और वो काफी यात्राएं कर चुके थे चार धाम और ये वो तो जब बहुत प्रयत्न के साथ वो दोनों पति पत्नी पहुंचे अमरनाथ पे और द्वार पे जाके मेरे नाना जी को उन्होंने मना कर दिया कि आपका स्वास्थ्य सही नहीं है आप नहीं जा सकते हैं और मेरी नानी को उन्होंने जाने दिया तो ऐसा भी होता है कि अगर भाग्य में नहीं लिखा है और बुलावा नहीं है आपका तो आप जो है द्वार से
5: इंटरेस्टिंग आपने अमरनाथ यात्रा के बारे में बात किया
4: जी
5: अप्रैल से इस साल अप्रैल से मैं अमरनाथ आई वाज वेटिंग फॉर द रजिस्ट्रेशन टू ओपन
4: अच्छा
5: तो मेरा इरादा पूरा था कि मैं इस साल अमरनाथ यात्रा करूंगी
4: अच्छा
5: जो जुलाई में खुलती है ना एक महीने के लिए खुलती है तो आई वाज एक्चुअली फोकस्ड ऑन दैट
4: यस
5: कि मैं अमरनाथ यात्रा जरूर इस साल जाके कर लूंगी
4: जी
5: लेकिन कैलाश मानसरोवर यात्रा के बारे में तो मैंने सोचा भी नहीं
4: बताइए
5: वही तो मैं बोल रही हूं ना कि मेरा रास्ता ऐसे सीधा चल रहा था इतना शार्प लेफ्ट टर्न भगवान ने करवाया सॉरी राइट टर्न भगवान ने करवाया कि मुझे समझ में नहीं आई कि 1 मिनट अभी पंडित जी मुझे बोल रहे हैं एंड विद इन 12 आवर्स आई हैड ऑलरेडी स्पोकन टू द टूर ऑपरेटर इन नेपाल
4: जी
5: और मेरा टिकट भी हो गया
4: जी जी ये तो बहुत ही
5: और ताज्जुब की बात ये है कि ये जो यात्रा पंडित जी के द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था
4: जी
5: ये लास्ट ईयर दिसंबर से ये शुरू हो गई थी
4: अच्छा
5: तो 32 मेंबर्स हैड ऑलरेडी सेड यस एंड इट वाज ऑल कंफर्मड मैं नंबर 33 थी
4: वाओ
5: और सबसे लास्ट में मतलब 6 महीने से इन लोगों का सब कुछ हो गया था मेरा तो सिर्फ 1 ही महीना हुआ
4: अच्छा
5: तो टूर ऑपरेटर एंड होली हिमालय टूर्स
4: जी
5: एक्सीलेंट एक्सीलेंट टूर्स उन लोगों का जो ऑर्गेनाइजेशन सब कुछ इट वाज लेड बाय मिस्टर ज्योति अधिकारी
4: जी
5: ही इज द ओनर ऑफ होली हिमालय टूर्स उन्होंने मुझे सिर्फ इतना बोला जब मेरी बात उनसे हुई कि शोभना जी अभी आप पैसे वैसे के बारे में चिंता मत करो जस्ट सेंड मी अ कॉपी ऑफ योर पासपोर्ट बिकॉज आई वाज सो लेट
4: जी
5: मतलब 6 महीने हो गए थे और मेरा तो मैं हुआ तो बोला सिर्फ मुझे अपना पासपोर्ट कॉपी भेजो क्योंकि आई हैव टू अप्लाई फॉर वीजा एंड परमिट एंड ऑल दैट विद द चाइनीज गवर्नमेंट तो सिर्फ मैंने वही जैसे मैंने अपना पासपोर्ट भेज दिया मैंने अपने शिव जी के सामने जाके बैठा मैंने बोला आप बुला रहे हो और मैं अब आ रही हूँ और मैं कुछ नहीं जानती
4: तो ये बताइए कि इस पूरी यात्रा का सबसे यादगार या सबसे भावुक पल कौन सा रहा जिसे आप जीवन भर अपने साथ रखेंगी उसको कभी भूल नहीं पाएंगे
5: दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन
4: बहुत सारी पल होंगे बहुत सारी यादें जुड़ी होंगी
5: जब मैं नेपाल पहुंची
4: जी
5: तब तक इट हैडन्ट हिट मी कि मैं एक्चुअली कैलाश यात्रा पे जा रही हूँ
4: जी
5: क्योंकि नेपाल तो मैं दो तीन बार पहले भी हो चुकी थी तो जब मैं चाइनीज बॉर्डर जब मैंने क्रॉस किया
4: जी
5: तो मुझे ऐसे लगने लगा अब कुछ हो रहा है होने वाला है ऐसा
4: जी
5: तो आई गेस जब मैं मानसरोवर पहुंची
4: जी
5: वहां जो अनुभव मुझे मिला जो मैंने फील किया जो मैंने एक्सपीरियंस किया ऋषा जी मैं आपको बता नहीं सकती वर्ड्स कैन नॉट डिस्क्राइब हाउ यू फील और अगर आप सिर्फ घूमने के लिए जा रहे हैं ना तो आपको कैलाश यात्रा पे नहीं जाना चाहिए
4: अच्छा
5: क्योंकि इट्स अ वेरी वेरी स्पिरिचुअल जर्नी और मैं वहाँ जब मानसरोवर लेक पे जब मैं खड़ी थी सब लोग थे अपना अपना सब कुछ कर रहे थे मैं वहाँ थोड़ा अपने आप को साइड में करके आई वाज जस्ट देयर ट्राइंग टू टेक इन
4: यस
5: द एनॉर्मिटी ऑफ व्हाट आई वाज जस्ट एक्सपीरियंसिंग
4: वाओ या
5: एंड जस्ट सो इमोशनल
4: आई कैन टेल कि शोभना जी जो है बहुत इमोशनल हो रही हैं और श्रोताओं आपको बता दूं कि शोभना जी पहले भी आ चुकी हैं दर्पण रेडियो पे और एक ये स्पिरिचुअल लीडर हैं स्पिरिचुअल वक्ता हैं जो हमेशा लोगों के लिए अच्छी बातें कहती हैं उन्हें मोटिवेट करती हैं जीवन के प्रति तो मैं समझ सकती हूँ इनके लिए जो है वो कैलाश मानसरोवर की यात्रा कितनी स्पिरिचुअल रही होगी और यही वजह थी कि मैं चाहती थी कि श्रोताओं को इनसे जोड़ूं और इनके अनुभव के द्वारा जो है उस स्पिरिचुअलिटी को हम महसूस कर सकें तो शोभना जी बहुत इमोशनल हैं और मैं भी इमोशनल हूं तो चलिए वहां पहुंच के कब तक आपको लगा कि ये बहुत ईजी है लोग कहते हैं इतना कठिन है तो किस पॉइंट पर आपको लगा कि ये ईजी है और कहाँ से लगा कि अब ये असंभव सा है
5: देखिए मानसरोवर तक तो ठीक था
4: अच्छा
5: ठीक है वी ऑल वेरी एक्साइटेड
4: और वहाँ तक गाड़ी चली जाती है
5: हाँ आराम जी, से जी. बस में हम थे
4: जी
5: मानसरोवर में हम रुके भी वेरी नाइस एक्सपीरियंस वहाँ ऐसा लगा कि अब हम शिव शक्ति के दरबार में आ गए
4: अच्छा
5: दूसरी बात मैं बताना भूल गई थी जब मैं मानसरोवर लेक पे थी ना
4: जी.
5: तो वहाँ मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ओह पार्वती माता यहाँ पे है
4: अच्छा.
5: शिव जी यहाँ पे है लाइक दैट्स द बेथिंग ग्राउंड ना
4: जी.
5: तो ऐसा मुझे लगा कि अब मैं शिव शक्ति के दरबार में आ चुकी हूँ
4: जी
5: वो मैंने महसूस किया एंड यू कांट एक्सप्लेन दैट यू कांट एक्सप्रेस दैट
4: जी
5: फिर जब हम मानसरोवर से जब हम डार्जिलिंग की तरफ जब गए वो भी बहुत सुंदर बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी था
4: जी.
5: रास्ता भी टिबेट का बहुत ही अच्छा है हाँ नेपाल से चाइनीज बॉर्डर तक जाना द रोड वाज एक्सट्रीमली बैड
4: अच्छा
5: हाँ, बहुत ही दिक्कत था रास्ता बहुत खराब था बट वी मेड इट एंड वंस
4: आपको थोड़ा रोकूंगी कि मानसरोवर जब आप पहुंचे तो थोड़ा ऐसे ही महसूस करने के लिए कि कितना बड़ा वो मानसरोवर है
5: इतना बड़ा है
4: अच्छा
5: और ऑपोजिट में राक्षस ताल भी है
4: अच्छा
5: एंड यू कैन सी द डिफरेंस बिटवीन द टू लेक्स एक मानसरोवर फ्रेश वाटर लेक है और राक्षस ताल सॉल्ट वाटर है
4: तो बिल्कुल जैसा सिडनी हार्बर में आपको लगता है उससे भी बड़ा
5: इट इज सो ब्यूटीफुल एंड सो बिग तो अच्छा. हमने मानसरोवर का परिक्रमा बस में किया
4: अच्छा.
5: क्योंकि यू ऑब्वियसली कांट वॉक अराउंड इट ना तो लाइक आई सेड रिचर्ड जी इट वाज लाइक आई हैड एंटर्ड the abode of Lord Shiva aisa mujhe mehsoos hua aur wahan ka jo pebbles hote na wo main lana bhul gayi wahan main pebbles uthane lagi
4: ji
5: to mujhe aisa laga ki ye main ghar leke jaungi aur apne saath main ek chhota sa piece of mansarovar apne saath jaise bhi maine aapko jal diya
4: aapne mujhe mansarovar ka jal diya aur main bata nahi sakti dekhiye ab main emotional ho gayi
5: you know kyunki सबके भाग में वहाँ जाना लिखा है नहीं लिखा है ये हम नहीं जानते लेकिन कितनी बड़ी बात है कि मानसरोवर का जो जल है हाँ, आज आप तक पहुंच गया
4: बिल्कुल बहुत बड़ी बात है तो मानसरोवर के पीछे क्या कहानी है कि क्या
5: वहाँ पे पार्वती माता शिव जी वो उनका बेदिंग स्थान था
4: के लिए, हाँ, जी, हाँ, जी जी तो अच्छा तो अब चलिए अब आगे बढ़ते हैं तो मानसरोवर के बाद फिर आप पहुंचे डारचिन में
5: डारचिन हाँ आई मीन वी हैड अ स्टॉप इन किरोंग एंड ऑल दैट वहाँ स्टॉप्स इस कारण होता है ताकि आप अक्लमेटाइज हो सको
4: जी
5: क्योंकि इतना हाइट है ना
4: जी
5: तो आप दिक्कत की बात कर रही थी तो मेरा नोज ब्लीड होने लगा
4: जी
5: सर में दर्द सिर्फ मेरा नहीं और भी टीम मेंबर्स
4: तो का ये कहाँ पे शुरुआत हुई मानसरोवर से
5: किरोंग से
4: अच्छा
5: थोड़ा सा ऐसे नोज ब्लीड होने लगा और फिर वो नोज ब्लीड कंटिन्यू हुआ
4: जी
5: और लाइफ में ऐसे मुझे नोज ब्लीड्स नहीं होते
4: जी
5: फिर वो जो डायमोक्स खाना पड़ता है ना जो एल्टीट्यूड टैबलेट्स होते हैं जस्ट टू हेल्प यू अक्लेमेटाइज बिकॉज दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट 4,650 मीटर्स अबव सी लेवल तो हमारा जो हम यहाँ सिडनी में रहते हैं वी आर नॉट अक्लेमेटाइज टू दैट इसीलिए ये यात्रा 10 दिन तक लगता है बिकॉज 2-3 दिन 4 दिन आपको अक्लमेटाइज होना पड़ना ही पड़ना
4: कि बॉडी अडॉप्ट करे exactly, उस, हाँ. उस जगह
5: यू हैव टू अक्लमेटाइज अदरवाइज आप ये यात्रा नहीं कर सकते
4: जी तो मानसरोवर में रुकने के लिए क्या होटल वगैरह वहाँ हाँ, पे हैं या टेंट में
5: ना ना ना इट वाज अ ब्यूटीफुल होटल
4: अच्छा
5: जितने सारे होटल्स में हम रुके थे वो बहुत अच्छा था
4: जी तो बहुत अच्छी बात है चलिए और यात्रा को आगे बढ़ाएंगे और क्यों ना एक और शिव भजन हम सुन लेते हैं
5: बिल्कुल
4: धन्यवाद

0: श्री ओम की नई रेस्पाइट के सेवा आपकी सुविधा के लिए तैयार है। क्या आप छुट्टियों में स्वास्थ्य लाभ हेतु एक ऐसी संस्था की तलाश कर रहे हैं जहां पर भारतीय भाषा, भोजन व संस्कार से आपको या आपके परिजनों की देखरेख हो सके, जो ऑस्ट्रेलिया के मानकों पर भी उच्च कोटि की हो? हमारी सेवाएं ललॉर्ड पार्क व वॉक्स हिल में उपलब्ध हैं। हमारी सेवाओं में शामिल हैं व्यक्तिगत सेवा, आपके घर ही आपकी सेवा, डे रेस्पाइट केयर, स्वास्थ्य व वेलनेस, सेल्फ फंडेड केयर, डेमेंशिया सपोर्ट। ज़्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 1300-908-681। ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम का संदेश।
1: ये था हमारे स्पॉन्सर श्री ओम केयर।
2: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
3: 2OOO's station sponsor.
4: Every Sunday, listen to The Hindi Show, 98.5 FM, Radio 2000.
5: हर रविवार सुनिए दर्पण हिंदी कार्यक्रम 98.5 FM पर सुबह 9 से 11 बजे तक।
6: श्रोताओं, हम बातचीत कर रहे हैं कैलाशी शोभना शर्मा जी से। उनकी यात्रा का वृतांत सुन रहे हैं, उनके अनुभव से जानना चाह रहे हैं कि कैलाश की यात्रा संभव है या नहीं है। तो शोभना जी, मुझे याद है कि आपने अपनी जर्नी को जो है हर पल शेयर किया फेसबुक पे और मैं उसको फॉलो करती रही। तो जब मानसरोवर पहुँचे, जहाँ तक सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, आपने बैठ के कुछ पंक्तियाँ गुनगुनाई थी शिव जी के बारे में। तो हम चाहेंगे कि दो लाइन आप वो हमें सुनाएं, अगर याद हो तो।
7: हाँ, वो पंडित जी ने मुझे बोला एक शिव जी का एक भजन गा दो
6: जी।
7: तो हम अष्टपद में बैठे थे। दैट वाज माय फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ माउंट कैलाश
6: जी।
7: तो इतना ओवरवेलमिंग एक्सपीरियंस था
6: जी,
7: मतलब माय हार्ट वाज रेसिंग सो फास्ट। और मैं देखिए, आप किस भाव से माउंट कैलाश को देख रहे हैं, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है।
6: अच्छा,
7: अगर आप उसको सिर्फ एक टूरिस्ट के पॉइंट से देख रहे हैं, लाइक आई सेड, तो मतलब उसमें कोई मतलब ही नहीं होती है
6: जी।
7: इट डिफीट्स अ पर्पस ऑफ यू गोइंग देयर
6: जी।
7: तो मैं जब वहाँ बैठी ना, तो मुझे ऐसा लगा कि दैट वॉज साउथ फेस ऑफ माउंट कैलाश
6: जी।
7: तो मुझे ऐसा लगा कि शिव जी की आंखें मुझे देख रही है।
6: अच्छा,
7: क्योंकि आप तो जानते हैं मैं शिव शक्ति की उपासक हूँ, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं शिव की, मेरे शिव जी मुझे देख रहे हैं।
6: अच्छा,
7: और लोगों को शायद मेरे आसपास, उनको लगा कि अच्छा ये माउंट कैलाश है ना, कैलाश पर्वत है, लेकिन
6: मैंने महसूस किया,
7: मैंने पर्वत की तरह उनको नहीं देखा, मुझे मेरे शिवजी दिखे वहाँ। जी,
6: बिल्कुल, महादेव के दर्शन हुए। हाँ,
7: महादेव की, और लाइक ही वाज लुकिंग एट मी
6: जी।
7: तो पंडित जी ने बोला भजन गा दो, तो एक तो सांस नहीं आ रही थी बिकॉज ऑक्सीजन लेवल इज स्टिल प्रीटी लो देयर
6: जी।
7: तो मैंने बोला पंडित जी मैं कोशिश करूंगी, लेकिन everyone was having breathing difficulties there
6: जी.
7: because the oxygen is very thin. तो फिर मैंने बोला कि यहाँ कौन सा भजन गाए। तो मैंने, मेरे दिमाग में आया कि

0: करते हैं तुझको प्रणाम। और जब मैं ये गाई ना, मैं आप विश्वास नहीं कर सकते, मैं वहां बैठ के मैं उनको प्रणाम कर रही हूँ और आई वॉज जस्ट बिसाइड मायसेल्फ।
1: शोभना जी, आप कह रहे हैं कि आप तैयार नहीं थे, लेकिन मानसिक रूप से आप पूरी तरह से तैयार थे कि आपको याद था कि भाई कैलाशी के लिए आपको गाना गाना है, और कितना सुंदर भजन आपने गाया और
0: शिव जी ने सुना। देखिए, कोई कभी कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार नहीं हो सकते
1: जी।
0: आप चाहे एक महीना जिम जाओ, जैसे बोलते हैं कि स्टार्ट वॉक,
1: तैयारी करनी,
0: फिजिकल फिटनेस आपको लानी पड़ेगी, वो सब मैंने किया
1: जी,
0: ठीक है। हाँ, मेरा श्रद्धा मेरे भगवान से बहुत ज़्यादा है, दैट वॉज फाइन
1: जी,
0: लेकिन यू आर नेवर फुली प्रिपेयर फॉर कैलाश यात्रा
1: जी जी।
0: और जिसको भी जाना है ना, यू हैव टू हैव अ वेरी वेरी ओपन माइंड, क्योंकि जिस तरह तरह के दिक्कतें आपके लाइफ में वहाँ आएंगे
1: जी,
0: और सबसे बड़ी दिक्कत तो है टॉयलेट का।
1: अच्छा,
0: को वहाँ पिट टॉयलेट है और हम लोग यूज्ड टू नहीं है
1: जी,
0: तो आपको अपने माइंड को ऐसे सेट करके जाना है कि दीज आर द इश्यूज आई एम गोइंग टू बी फेसिंग एंड हाउ कैन आई ओवरकम दीज इश्यूज।
1: जी,
0: तो अगर आपको ये सब इश्यूज है तो फिर दिक्कत तो बहुत ज़्यादा होगी
1: जी। और आपको बता दें कि यतीन जी जो सुन रहे हैं बहुत ध्यान से, और जो जितने भी शिव भक्त हैं या कैलाश जाने की यात्रा करते हैं, वो आपको बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। और यतीन जी कहते हैं कि जो ऐसा लग रहा है कि कैलाश की यात्रा कर रहे हैं वो तो तो हाँ, बताइए कठिनाइयों की बात करते हैं।
0: हाँ, तो मेरे पास तो सिर्फ एक ही महीना था, दैट वाज क्योंकि 26-27 को मैंने डिसाइड किया
1: जी,
0: और 3-4 दिन में तो मई का महीना तो फिनिश होने वाला था, सो आई ओनली हैड द मंथ ऑफ जून
1: जी।
0: एक ही महीना था मेरे पास सब कुछ की तैयारी करने के लिए
1: जी,
0: एंड दैट वाज द एक्सरसाइज। जिम जाना मैंने शुरू किया, वैसे तो मैं जाती थी लेकिन एवरी सिंगल डे वो जो स्टेप अप होती है कि आप, और याद रखिए कि आप भले जाके जिम में जाके आप वहाँ वॉकिंग कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, जिम का एक्सरसाइज और एक्चुअल कैलाश जो एनवायरनमेंट है, इतने सारे रॉक्स है, पत्थर है, देयर इज नो कंपैरिजन, देयर इज एब्सोल्युटली,
1: कोई प्रॉपर रोड नहीं है चलने,
0: कुछ नहीं है, इट्स विल्डनेस।
1: अच्छा,
0: इतने सारे रॉक्स है, आपने तो फोटोज देखे होंगे
1: जी, जी।
0: डोलमाला पास जब हम घोड़े पे जा रहे थे, मैंने सोचा कि हे भगवान, दिस इज इट, मैं मर जाऊंगी यहाँ, ऐसा फीलिंग, इतना मतलब कठिन है वो
1: जी।
0: तो ऊपर तो हम किसी तरह से पहुंच गए, लेकिन सबसे ज्यादा कठिन था नीचे उतरना, एंड नो अमाउंट ऑफ प्रिपरेशन प्रिपेयर्स यू फॉर दैट पार्ट।
1: अच्छा, तो ऊपर चढ़ना आज कितना किलोमीटर ऊपर चढ़ते हैं?
0: देखिए, डे वन आई थिंक शायद 12-14 किलोमीटर्स था, एंड डे वन वॉज फाइन। डे वन मतलब फ्लैट सर्फेस है, और चाहे आप घोड़े पे जाओ या पैदल चल के जाओ, दैट्स टोटली अप टू यू
1: जी।
0: द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द यात्रा इज डे टू, जब आप डोलमाला पास गौरीकुंड जब आप ऊपर जाते हो, दैट्स 5,650 मीटर्स अबव सी लेवल
1: जी।
0: हमारा ऑक्सीजन टैंक भी था, फिर भी हमको दिक्कत आई, सांस फूल रही थी, और आई वाज हाइपरवेंटिलेटिंग
1: जी। तो जो आपके ग्रुप में जो थे, वो सबसे ओल्डेस्ट एज क्या रही होगी अंदाजन?
0: आई थिंक 60s में।
1: अच्छा,
0: शायद 60s
1: जी
0: में।
1: जी, और यंगेस्ट एज क्या?
0: यंगेस्ट पंडित देवेंद्र शर्मा की बेटी थी तुलसी रानी, शी वाज 10 इयर्स ओल्ड।
1: अच्छा,
0: शी वाज द यंगेस्ट इन टर्म्स ऑफ फीमेल्स, और यंगेस्ट लड़का था हर्षीव, ही वाज 6 गोइंग ऑन टू 60।
1: तो ज्यादातर लोग आपको लगता है कि 50-60 की उम्र के होंगे अंदाजन,
0: मतलब रेंज फ्रॉम 10 टू 60s, और यंग पीपल भी थे जो 20s में 30s में हैं
1: जी।
0: ऐसा
1: तो मतलब यंग लोग भी यात्रा करना चाहते हैं कैलाश मानसरोवर की। तो आपने बताया कि उतरने में बहुत कठिनाई हुई क्योंकि रोड सही नहीं थी, और
0: रोड है ही नहीं
1: जी जी,
0: ये तो आप एक पर्वत पे हो मतलब डोलमा लपास जो है इट्स अ वेरी स्टीप असेंट बहुत हाइट पे है और वहां आप मैं तो घोड़े पे थी क्योंकि द अदर थिंग मैं ये कहना चाहती हूं कि आपको ज्यादा स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है
1: अच्छा
0: इसमें आपको प्रैक्टिकल होनी चाहिए
1: जी
0: हम ऑस्ट्रेलिया में हमारा लाइफस्टाइल यहां बहुत कंफर्टेबल है हम लोग उस तरह से अक्लमेटाइज नहीं है हम लोग पहाड़ी लोग नहीं है हम लोग जैसे टिबेटन लोग वहां दौड़ते थे चलते थे इतना फास्ट वो हम नहीं कर सकते बिकॉज़ वी आर नॉट यूज्ड टू दैट एनवायरनमेंट वो जो वातावरण है हम लोग उससे यूज्ड नहीं है तो बी रियलिस्टिक बी प्रैक्टिकल अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वहां एक घोड़ा और पोटा दोनों को आप हायर करो ऐसे क्या है ना कि अगर आप थक गए तो आप घोड़े के ऊपर फिर चढ़ सकते हो
1: जी
0: हां और जहां तक आप चलना चाहते हो तो वो आप
1: चल सकते हो
0: जी और पोटा आपका जो बैकपैक है वो पोटा कैरी करेंगे
1: बहुत अच्छी एडवाइस आपने दी तो आपको कभी डर नहीं लगा ऐसा नहीं लगा कि वापस चलें ऐसा ना हो कि मर जाएं
0: बिल्कुल लगा अरे डे 1 के बाद तो मैंने सोचा दैट्स इट
1: अच्छा
0: तो आप अनुभव की बात कर रहे थे कि ऐसा कभी कुछ हुआ वहां
1: जी
0: तो डेवन जब हमने यमद्वार क्रॉस करके जब हम निकले जब हमारी यात्रा शुरू हुई सब कुछ बहुत अच्छा था हम लोग इतना एक्साइटेड थे मैंने कुछ दूर तक चला फिर घोड़े पे गई फिर उतर के फिर चला मैंने दैट वाज ऑल फाइन जब मैं दार्चन से दिरपुक पहुंची
1: जी
0: दैट्स द एंड ऑफ डे 1 तो वहां नॉर्थ फेस का दर्शन हुआ
1: ओहो
0: ओ इतना नजदीक था ऋचा जी मैं आपको बता नहीं सकती लाइक आई सेड
1: अष्टपद कितना नजदीक लाइक 5 मीटर्स 10 मीटर्स और 100
0: ना ना ना दूर तो बहुत था लेकिन मुझे ऐसा लगा कि इतना नजदीक इट्स राइट इन माय फेस
1: वाओ
0: तो मतलब आप ऐसे आंख नहीं मिला सकते ऐसा मुझे
1: फिर भी कुछ अंदाज दीजिए लाइक कि 100 मीटर या हां
0: बहुत
1: 2 किलोमीटर
0: उससे भी ज्यादा दूर
1: अच्छा
0: लेकिन इट्स राइट इन योर फेस ऐसा दूर भले है लेकिन आपको ऐसा लगेगा कि बहुत नजदीक है
1: अच्छा
0: हां
1: तो आप महसूस कर सकते हो और स्पष्ट दिखता है
0: हां हां हां बिल्कुल
1: जी
0: तो इट जस्ट डिपेंड्स ऑन द क्लाउड्स एज वेल तो क्लाउड्स आके कभी-कभी कवर कर देता था एंड ऑल दैट
1: बट तो वहां बर्फ जमी रहती है कैलाश पर्वत पे
0: हां बर्फ दिख रहा था
1: जी
0: बट पूरा बर्फ नहीं था
1: बिकॉज़
0: इट्स समर टाइम देयर
1: जी
0: तो एनीवे मैं अब दिरपुक में पहुंच गई हूं हम लोग अब शायद 4:30 बजे शाम था तो हम लोग अब चाय पी रहे हैं और जब चाय पी रहे हैं तो एवरीवन इज टेकिंग फोटोज एंड ऑल दैट अब मैं वहां बैठी हूं एंड जो मेरा एक्सपीरियंस अष्टपद में था वो एक्सपीरियंस फिर से मुझे यहां हुआ कि मुझे ऐसा लगा कि शिव जी के आईज मुझे देख रहे हैं
1: जी
0: ठीक है उसके बाद पता नहीं मुझे क्या हुआ आई जस्ट सडनली फेल्ट वेरी सिक जैसे मुझे ताकत ही नहीं है तो मैं जाके फिर कमरे में मैंने बोला आई एम जस्ट गोना स्लीप दिस आउट
1: जी
0: तो मैं जाके बेड में सो गई आई मीन लेट गई मैंने लंच मैं नहीं खा पाई थी फिर डिनर भी मैंने नहीं किया आई जस्ट आई लॉस्ट माय एपेटाइट
1: जी
0: ये भी होता है कि यू विल लूज योर एपेटाइट एंड मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती कि मुझे क्या हो गया था
1: जी लाइक यू फेल सिक
0: आई फेल सिक आई फेल्ट लाइक आई हैड नो एनर्जी और मुझे ऐसा लगा कि अब मैं ये नहीं कर सकती
1: जी
0: तो इतना बुरा था मेरा हालत वहां पे एक और एक लेडी थी जिन्होंने चला था एंड she was going to go back the next day in an ambulance because uska thoda health issues ho gaya to another young girl came and said auntie if you're not feeling well you can go back with the other auntie to maine kaha ha I will consider it
1: acha
0: itna bhi ho gaya ki ab main consider kar rahi hu ki ye ab mujhse nahi hoga main kal wapas dusri lady ke sath main wapas
1: to kuch log wapas bhi chale gaye
0: ek chali gayi thi
1: acha
0: to 33 mein se 4 तो वैसे भी नहीं आए थे
1: अच्छा
0: और एक फिर
1: वापस चली गई
0: डे 1 के बाद वापस चली गई
1: जी
0: तो अब क्या अब मैं सो रही हूं एंड आईड लाइक टू शेयर दिस विद पीपल बिकॉज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है यहां आपका भक्ति गेट्स टेस्टेड यहां आपका भगवान में जो विश्वास है गेट्स टेस्टेड तो अब 2 बजे रात को सब लोग सो रहे थे तो मुझे बाहर जाना था तो मैं उठी अभी भी मैं मतलब उठना तो पड़ा मुझे तो मैंने अपना फ़ोन का जो टॉर्च है वो ऑन किया और मैं बाहर जा रही हूँ अब
1: जी
0: एवरीवन इन माय रूम देयर वर 7 ऑफ अस एवरीवन इज स्लीपिंग अब मैं बाहर जा रही हूँ अब टॉयलेट तो हम यूज़ नहीं कर सकते तो बाहर ही बैठना पड़ता तो जब मैं सीढ़ी उतर के एंड इट वॉज सो कोल्ड आप विश्वास नहीं करोगे वहाँ कोई भी जाग नहीं रहा था उस टाइम एवरी लाइक द होल प्लेस वॉज स्लीपिंग अब मेरा दिन का तो एक्सपीरियंस मैंने आपको बता दिया कि इट वॉज लाइक ही इज वॉचिंग मी जब मैं सीढ़ी उतर रही थी तो ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड इज द नॉर्थ फेस
1: अच्छा
0: तो पता नहीं क्या हुआ मैं ऐसे घूमी एंड आई एम लुकिंग एट
1: द
0: कैलाश पर्वत
1: जी
0: रिचा जी वो जो मैंने उस पल फील किया
1: जी
0: इट्स लाइक ही वॉज राइट इन माई फेस
1: ओह माय गॉड
0: और फिर वहाँ मैंने उनसे बात किया
1: अच्छा
0: मैंने बोला कि शिव जी आपने मुझे यहाँ बुलाया
1: जी
0: और देखो मेरे साथ अब क्या हो रहा है कि मुझे हिम्मत नहीं है कि डे टू करना तो मैंने बोला जैसे आपने मुझे बुलाया तो ये जो मेरा परिक्रमा है आपको मेरी हेल्प करनी है और ये मैं परिक्रमा करना चाहती हूँ लेकिन आपको मुझे हिम्मत देनी है
1: जी
0: हेल्प मी फिनिश दिस परिक्रमा
1: जी
0: यू कांट डू दिस टू मी भगवान मैंने सीधा अच्छा। ऐसे बोला कि भगवान यू कांट डू दिस
1: कभी कभी भगवान से भी लड़ाई करनी पड़ती
0: हाँ,
1: है
0: नहीं वो मेरा इम्तिहान था
1: जी
0: कि चलो मैं तुझे यहाँ ला के आई विल डू दिस विथ यू मैं भी देखना चाहता हूँ कि तू अब क्या करेगी
1: हाँ,
0: है ना
1: जी
0: मैं बता रही हूँ कि जितना आप शिव जी की भक्ति करते हो ना सबसे ज्यादा वो आपको आपका क्लास लेते हैं
1: क्या बात
0: तो फिर व्हाट हैपन वाज अब ये सब बातें मेरी हो गई एंड अब मैं वापस रूम में चली गई जब मैं रूम में चली गई वहाँ मैं कुछ देर बैठी
1: जी
0: क्योंकि वो जो मैंने फील किया एक वाइब्रेशन था एक एनर्जी था जो मुझे ऐसा लगा कि मुझे मिला
1: जी जी
0: उस पल में इट वॉज जस्ट मी एंड गॉड
1: जी
0: इट वॉज जस्ट मी एंड लॉर्ड शिवा और मैंने उनको बोला कि आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते
1: जी
0: बुलाए क्यों जब ये करना था
1: जी,
0: ये
1: जी.
0: सब मैंने आई एम नॉट इवन
1: ashamed
0: मैंने बोल दिया आई वाज सो अपसेट
1: जी
0: आप विश्वास नहीं करोगे 15 मिनट बैठ के फिर मैं सो गई सुबह जब मैं उठी ना आई वाज लाइक जैसे मैं सिडनी में नॉर्मल हूँ आई वॉज लाइक दैट
1: क्या बात है
0: आप विश्वास नहीं करोगे पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आई वॉज सिटिंग ऑन अ हॉर्स एंड डे टू का परिक्रमा मेरी शुरू हो गई
1: बिल्कुल
0: हाँ लेकिन जब वहाँ ऊपर पहुंची तब वहाँ फिर से मेरा क्लास लिया
1: जी
0: और जो मेरा पोता था ना पूरे मेरे ग्रुप को ये पता है मेरा पोता मुझे छोड़ छोड़ के भाग जाता था और डोलमाला पास से वो गायब हो गया
1: अच्छा
0: इतनी दूर जब मैं अकेले वहाँ चली
1: जी
0: तो देखा वो एक पत्थर के ऊपर आराम से लेट के अपना वीडियो देख रहा है
1: अच्छा
0: बट वो भी उनको वो अपना किरदार निभा रहा था
1: जी
0: क्योंकि भगवान ने उसको ऐसा करने को बोला होगा
1: हाँ, कि आपको अकेले छोड़ दे
0: मुझे अकेले छोड़ दिया
1: जी
0: और अकेले छोड़ने का मतलब क्या था
1: जी
0: ये मैंने डोलमाला पास में जब मैं उतरी
1: जी
0: जब मैं उतर गई तब मुझे समझ आया कि भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया
1: जी
0: एंड आई एम सो ग्लैड ही डिड दैट टू मी
1: जी
0: क्योंकि उस पल मेरे जिंदगी के सबसे बड़ी सबक मैंने सीखा
1: अच्छा
0: और वो ये है ना कि जैसे हम अकेले जन्म लेते हैं हमको अकेले मरना है वैसे हमको अकेले इंडिपेंडेंटली जीना भी सीखना चाहिए
1: जी
0: And what I learned was how to survive by myself. ऐसा नहीं कि मैं सिडनी में survive नहीं कर रही हूँ independent ज़रूर हूँ लेकिन वो जो survival थी ना रिचा जी इतना कठिन मतलब उतार था वो
1: जी.
0: और वहाँ मुझे भगवान ने survive करना सिखाया
1: जी.
0: कि चलो तेरा पोटा भी अब हम ले लेते हैं देखते हैं हम
1: मतलब बहुत ही मुश्किल
0: ओह माय गॉड आई लिटरली क्राइड सो मच
1: तो आपको ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे मेरी मृत्यु भी हो सकती है
0: बिल्कुल
1: जी
0: जब मैंने जब ऊपर से जब देखा चींटी की तरह लोग चींटी की तरह दिख रहे इतना दूर मैंने बोला भगवान ये मैं नहीं कर सकती हिम्मत हार गई थी मैं
1: वाओ बताइए
0: आपने मेरे फोटोज जो देखे होंगे गौरीकुंड के पास
1: जी
0: आई कुडंट इवन स्माइल
1: हां बिल्कुल आपने बताया था उसमें कि बहुत
0: मेरी तबीयत इतना खराब थी एंड इट वाज जस्ट टू मच फॉर मी अब आप सोचो इतना दूर चींटी की तरह लोग दिख रहे हैं आपको वहां तक पहुंचना है आपके अंदर आप क्या फील करोगे
1: जी जी
0: मतलब मैं तो इतना परेशान
1: की शक्ति होना चाहिए
0: बिल्कुल मैं तो इतना परेशान हो गई थी कि मैं वहां तक पहुंचूंगी कैसे मैं नहीं कर पाऊंगी
1: तो चलिए फिर उसके बाद अच्छी बात क्या हुई आपसे भगवान के दर्शन हुए और उन्होंने कहा कि हिम्मत दी आपको
0: अच्छा उतरने के टाइम 2/3 ऑफ द वे
1: तो वहां से उतरने लगते हैं नॉर्थ फेस से
0: यू हैव टू क्योंकि डोरमाला पास में आप बहुत देर तक नहीं रह सकते
1: अच्छा,
0: वहां
1: सबसे हाईएस्ट पॉइंट है जी
0: ऑक्सीजन लेवल बहुत कम है और ह्यूमन ट्रैफिक भी बहुत ज्यादा है
1: तो कितने देर वहां रह सकते हैं
0: मतलब यू कीप गोइंग
1: अच्छा
0: हां यू कांट रियली स्टॉप
1: बस दर्शन करके आप वापस लौटना शुरू करते हो जी
0: तो जब मैं 2/3
1: तो ये तीसरे दिन की बात कर रहे हैं
0: नहीं ये दूसरे दिन की बात है डे 2 जब मैं 2/3 उतर गई रुकते रुकते रोते गाते उतरी तो वहां तीन टिबेटन लेडीज आए मेरे मुझे हेल्प करने के लिए
1: जी
0: और लैंग्वेज बैरियर था तो साइन लैंग्वेज से बात किया और फिर उन्होंने मुझे पानी वानी दिया क्योंकि मेरा जो हां वाटर बॉटल था वो मेरे बैग में था जो पोटा के पास था
1: अच्छा,
0: मेरे पास पानी भी नहीं था
1: ओहो
0: तो गला भी सूख रहा था आई वाज जस्ट इट वाज अ रियली
1: तो बहुत ही कठिन परीक्षा ले ली भगवान ने आपकी
0: बहुत लेकिन लाइक आई सेड आई एम हैप्पी
1: जी
0: आई एम एक्सट्रीमली हैप्पी कि वो मेरे साथ हुआ
1: बिकॉज़ वो तीन तिब्बतीन महिलाएं
0: थ्री टिबेटन लेडीज केम एंड हेल्प मी और ऐसे ऐसे ऐसे मुझे हाथ पकड़ के फिर उतारे लास्ट जो लास्ट लेग ऑफ द क्लाइम डाउन था
1: जी
0: वहां उन तीनों ने मुझे हेल्प किया और जब मैं उनको पैसा ऑफर किया ना एज अ थैंक यू तो हाथ जोड़ के सिर्फ सर हिलाए
1: जी
0: एंड देन दे जस्ट वेंट
1: बताइए तो ईश्वर ने भेजा उन्हें दूत बना
0: आई थिंक थ्री टिबेटन लेडीज केम एंड हेल्प मी और ऐसे ऐसे

0: पूर्ण हुई तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी लोगों को जो है ना जो भी भक्त बैठे हैं सुन रहे हैं आपको तो क्या कहना चाहेंगी आप
1: मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर बुलावा आया
0: जी
1: जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग एंड गो
0: अच्छा
1: वहाँ आपको दो बार तीन बार दस बार सोचना नहीं चाहिए कि अरे मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ नो प्लीज डोंट डू दैट
0: जी
1: अगर आप अफोर्ड कर सकते हो और आपका बुलावा आया
0: तो जरूर
1: जस्ट ड्रॉप एवरीथिंग एंड गो क्योंकि ये वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है कैलाश यात्रा पे जाना आसान नहीं है नहीं है नहीं है लेकिन इम्पॉसिबल भी नहीं है
0: क्या बात तो ये बताइए कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन आया इससे
1: देखिए आपको तो पता है मैं पहले से भी शिव की भक्ति करते आई हूँ
0: जी आप शिव शक्ति सेंटर है
1: हाँ, आनंद शक्ति सेंटर
0: आप चलाते हो हाँ, और स्पिरिचुअल बातें सबको सिखाते हो तो क्या आपके जीवन में परिवर्तन आया
1: आई एम जस्ट गोइंग टू रिफर टू माई नोट्स फॉर दिस बिकॉज ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है जो मैं सबसे शेयर करना चाहती हूँ
0: जी
1: और वो ये है कि डे वन ने मुझे क्या सिखाया
0: जी
1: ठीक है एक मिनट हाँ तो डे वन ने मुझे ये सिखाया कि आप अपने अहंकार अपने ईगो को कैसे छोड़ सकते हो
0: जी
1: ठीक है जैसे मैंने बताया कि डे वन में मेरी जो एक्सपीरियंस थी वहाँ अगर आप अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हो बहुत स्ट्रांग समझते हो तो वहाँ भी भगवान आपको रिमाइंड करते हैं कि मेरे इच्छा बिना आप आगे कदम नहीं ले सकते
0: जी
1: जो मेरे साथ हुआ
0: हाँ.
1: तो मतलब I'll just read this कि अपने अहंकार को छोड़कर अंदर की आध्यात्मिक यात्रा का आरंभ करना दैट्स डे वन आपको सिखाती है
0: जी
1: सॉरी ये मैंने थोड़ा नोट्स बनाए थे पहले एक पहला कदम है अपने आप को भगवान के चरणों में समर्पित करना
0: जी.
1: ये डे वन सिखाती है
0: अच्छा
1: डे टू ने मुझे ये सिखाया ये जो डोलमा लपास था जो सबसे हाईएस्ट पॉइंट था को डोलमा लपास को पार करना अपने पुराने जो बुरे कर्म या कुछ भी आपका था आपके दुख आपके जो परेशानियां थी
0: उसको ओवरकम करना
1: आपका जो बोझ था एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पीछे छोड़ने का एक प्रतीक देती है
0: जी
1: ये दिन एक आध्यात्मिक पुनर्जन्म मतलब एक स्पिरिचुअल रिबर्थ था मेरे लिए और वो जो अनुभव था ना लाइक जैसे बोलते हैं ना माय एंटायर बीइंग वाज पुल्ड अपार्ट
0: अच्छा
1: एंड आई वाज रीप्रोग्राम्ड एट डोलमा लपास एंड देन आई वाज रीसेट एंड देन सेंट डाउन
0: सो आप अपने आप को एक डिफरेंट पर्सन महसूस करती हैं
1: बिल्कुल
0: जी
1: बिल्कुल
0: जी
1: क्योंकि आप कैलाश यात्रा करके आप पहले जैसा कभी हो ही नहीं सकते
0: अच्छा
1: और दिस इज व्हाट द जर्नी एक्चुअली टीचेस यू
0: जी
1: और डे थ्री का एक पवित्र यात्रा का पूरा कर मतलब जो श्रद्धा है जो विनम्रता है भगवान के प्रति
0: जी
1: वो आपको ये सिखाती है कि इस दुनिया में बस आत्मा है और परमात्मा है और कैलाश जाने का मतलब मेरे लिए क्या था जब मैं वहाँ पहुँची मुझे ऐसा लगा कि भगवान आपने इस आत्मा जो मेरे शरीर के अंदर है वहाँ जाके भगवान के साथ
0: आत्मा और परमात्मा का मिलन हो गया
1: बिल्कुल है? मुझे ऐसा लगा
0: आपने महसूस किया क्या बात है क्या बात है बहुत ही सुंदर बात आपने कही और लोग इससे जो है आनंद उठा सकेंगे चलिए हम दोनों बहुत इमोशनल हो रहे हैं तो एक ब्रेक लेते हैं और शिव जी का एक और भजन सुनते हैं धन्यवाद
2: जस्ट मूव फ्रॉम ओवरसीज स्टार्ट बैंकिंग लाइक अ लोकल विद ANZ वी आर वन ऑफ ऑस्ट्रेलियाज बिगेस्ट बैंक्स एंड वी आर चोजन बाय मिलियंस For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
3: 2000 station sponsor.

0: You can listen to community announcements and sponsorships on our website, dapanradio.org.au.
1: Aap hamari samajik suchnay aur sponsors ke sandesh hamari website dapanradio.org.au par dekh sakte hain.
2: भाई साहब, ये करी मास्टर्स और अन्य मसालों में क्या अंतर है?
3: बहन जी, करी मास्टर्स कंप्लीट करी मिक्स है। इसमें आनियन, गार्लिक, जिंजर, टमाटर, नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया वे सभी मसाले मिले हुए आते हैं। ये बनाने में बहुत ही आसान और खाने में लाजवाब है। इट्स सो इजी। इनकी वेबसाइट का एड्रेस है www.currymasters.com.au.
4: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश। सो श्रोताओं, हमारा पहली अभी भी जारी है और जो एक मूवी आने वाली है बंटवारा 1947, उसके उसका एक पास जिसपे आप दो लोग, दो टिकट है उसमें, लेकिन एक पास, सो एक विनर होगा। आज का पहली है कि इस मूवी के डायरेक्टर का नाम क्या है, और वो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप, अगर आप दर्पण फोरम में हैं तो आप उसमें अपना नाम लिख दीजिए। अगर आप दर्पण फोरम में, व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हैं तो आप हमारे मोबाइल फ़ोन पे अपना टेक्स्ट भेज सकते हैं अपना डिटेल के साथ। वो हमारा फ़ोन नंबर है 0468-467-196। तो अभी भी जारी है, हम आपको अपने प्रोग्राम में उसका ट्रेलर भी सुनाएंगे, लेकिन अभी तो कैलाश यात्रा की बातचीत चल रही है तो हम वो पहले करेंगे।
5: जी हाँ श्रोताओं, अब हम समाप्ति की ओर बढ़ते हैं क्योंकि हमारे पास बहुत सारे कार्यक्रम हैं। आज सावन की भी बातचीत करेंगे। तो शोभना जी, जाते जाते आप क्या संदेश देना चाहेंगी इस यात्रा के विषय में, कैसे रैप अप करेंगी इसको?
6: देखिए, ये यात्रा जितना कठिन है ना, फिजिकली जितना कठिन है
5: जी,
6: उसको अगर आप साइड में थोड़ा रखेंगे तो आपको बस यही मान के चलना है कि दिस इज़ ए ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर सोल
5: जी।
6: मतलब आपकी जो आध्यात्मिक यात्रा, आपका जो इनर जर्नी है आपके सोल के लिए
5: जी,
6: ये यात्रा उसके लिए है
5: जी।
6: तो अगर आप कैलाश मानसरोवर यात्रा पे जाना चाहते हैं तो इतना आप समझ लीजिए कि ये यात्रा आपके आत्मा के लिए है, आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने के लिए।
5: वाह, बहुत सुंदर बात, बहुत सुंदर बात कही। आपके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए हमसे क्योंकि अभी सावन की हम चर्चा करेंगे और शिव जी का और सावन का तो जो है ना वो एक दूसरे के पहलू हैं कि सावन में शिव जी की पूजा का जितना महत्व है और जो भी सेलिब्रेशन है हरियाली का, वो एक दूसरे को जोड़ते हैं। तो श्रोताओं, सावन की तैयारी करते हैं, उसके बारे में आपको बताते हैं। और आपको बता दूं कि जब भी सावन का ये महीना होता है ना, मुझे ऐसा लगता है कि आदमी स्पिरिचुअल तो हो जाता है मानसिक रूप से, लेकिन शरीर में भी एक अलग सी ही फुर्ती आ जाती है। हमेशा आपको हर जगह हरियाली दिखती है, हरा भरा, बारिश हो रही है, तो मन एक अलग शांति की ओर बढ़ने लगता है और सेलिब्रेशन तो होता ही है। तो आइए इस लोक परंपरा के बारे में आपको बताते हैं और सावन की रिमझिम फुहारों से आपको मिलाते हैं। तो श्रोतागण, बारिश की रिमझिम फुहारें, मिट्टी की सौंधी खुशबू, मोर का नृत्य, कोयल की मधुर कूक, पेड़ों पर पड़े झूले, हाथों में रची मेहंदी और बोल बम का जय घोष, जी हाँ यही तो है सावन। हिंदू पंचांग के अनुसार सावन वर्ष का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित है, इसलिए हर सोमवार को शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ती है। कहीं कांवड़ यात्रा निकलती है और कहीं रुद्राभिषेक होता है। कहीं महिलाएं शिव पार्वती की पूजा कर अपने परिवार को सुख समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन सावन महीना केवल पूजा पाठ का महीना नहीं है, यह प्रकृति के उत्सव, रिश्तों की मिठास और आपको प्रकृति से मिलाने का भी एक महीना है। पुराने समय में सावन लगते ही बेटियां अपने भाइयों के साथ मायके आ जाया करती थीं। पूरा महीना हंसी खुशी अपनेपन और उत्सव में बीतता था और फिर रक्षाबंधन के बाद भाई उन्हें वापस ससुराल छोड़ आते थे। इस दौरान सखियों से मिलना, झूला झूलना, मेहंदी लगाना, लोकगीत गाना और माँ के हाथ का खाना, ये सब सावन की सबसे सुंदर यादें हुआ करती हैं। तो चलिए उस पलों को याद करते हुए उस पल में पहुँचते हैं और सुनते हैं सावन का वेलकम करते हुए ये गीत।

0: झंटक तक मन के मोर न जाता आया मिट्टी में जान जगाता आया धरती पहनेगी हरी सुनरिया बनके दुनिया
1: एक गगन बुझी एक गगन लगी।

0: Curry Masters Complete Curry Mix available at all leading spice shops.
1: ये था हमारे स्पॉन्सर करी मास्टर्स का संदेश
2: तो हम श्रोताओं हम बात कर रहे हैं सावन महीने की और उससे जुड़े हुए त्योहारों की तो सावन महीने में मुख्यतः तीन तरह की तीज मनाई जाती है जो कि सावन में नहीं है सावन में सबसे पहली तीज पड़ती है हरियाली तीज सावन शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरियाली तीज मनाई जाती है जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है यह हरियाली और खुशहाली का पर्व है इस दिन महिलाएं और युवतियां हरे रंग के वस्त्र पहनती हैं हरी चूड़ियां धारण करती हैं हाथों में मेहंदी रचाती हैं और अपने सखियों के साथ झूला झूलती हैं भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा कर अखंड सौभाग्य सुख और समृद्धि की कामना करती हैं हरियाली तीज में ये व्रत का पर्व नहीं है ये सखियों के मिलन का प्रेम अपनत्व और प्रकृति के उत्सव का पर्व है तो इस हरियाली तीज के बारे में श्रोताओं में ये कहना चाहूँगी कि पूरे सावन में हरे कपड़े ही पहनती हूँ कुछ ना कुछ हरा ज़रूर होता है मेरे पहनावे में और मैं वर्क पे भी जाती हूँ तो उनको बताती हूँ कि ये हमारा जो है ग्रीन मंथ है तो कई लोग हमको फॉलो भी करते हैं मेरे वर्क पे और मैं चाहूँगी कि आप लोग भी ये कोशिश करें कि अगर हरे कपड़े हैं तो या हरी चूड़ियाँ ही डाल लें तो कुछ ना कुछ हरियाली को आप सेलिब्रेट करिए इस महीने में शिव पूजा कीजिए और आपको बता दें कि ट्रिपल एस इवेंट जो कुछ महिलाएं मिलकर ऑर्गेनाइज करती हैं वो हरियाली तीज के पर्व को बहुत मनाती हैं धूमधाम से क्योंकि ये सखियों का पर्व है सखियों के मिलन का पर्व है तो एक सिस्टरहुड हम बनाने की कोशिश करते हैं इस वर्ष हम हरियाली तीज का पर्व मना रहे हैं 23 अगस्त संडे को 12 बजे से 4 बजे तक इसको मनाएंगे और पहली बार हम क्रूज़ पे इस पर्व को मना रहे हैं ये लेडीज़ ओनली त्यौहार हम मनाते हैं और हम चाहेंगे कि सभी महिलाएं जो भी सुन रही हैं वो जुड़ें क्योंकि वहाँ पे हम कजरी गाते हैं और जितने भी भारत के लोकगीत हैं शिव से जुड़े हुए लोकगीत जो कि सावन बारिश को दर्शाते हैं वो हम गाते हैं और एक साथ का जो है आनंद और अनुभव लेते हैं तो ज़रूर जुड़े आप हमें फ़ोन कर सकते हैं या ग्रुप में भी मैसेज कर सकते हैं अगर आपको टिकट चाहिए इसके लिए तो ये हुई सावन की तीज जो कि हरियाली तीज होती है सखियों का पर्व दूसरा तीज होता है कजरी तीज कजरी तीज हमें याद दिलाती है कि ये सिर्फ कजरी लोकगीत ही नहीं है मनोरंजन के लिए नहीं है बल्कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर है कजरी तीज में कजरी आप गाएं तो उसमें एक कहानी सी आपको सुनाई देती है जिस जगह की कजरी तीज होती है उस परंपरा के बारे में वर्णन रहता है स्त्री मन की भावनाएं परिवार का अपनापन और गांव की मिट्टी की महक को दर्शाता है तो ये हो गई कजरी तीज की बात तीसरी तीज जो मुख्य होती है हरतालिका तीज तो सावन के बाद भाद्रपद शुक्ल पक्ष की तृतीया को हरतालिका तीज मनाई जाती है इस दिन महिलाएं माता पार्वती की कठोर तपस्या करके भगवान शिव से उनके दिव्य मिलन का स्मरण करते हुए व्रत करती हैं यह पर्व श्रद्धा विश्वास और अटूट समर्पण का प्रतीक माना जाता है तो दोस्तों सावन की ये बातें सुनने के बाद एक आपका मन कर रहा होगा कि एक गीत ज़रूर सुने सावन का आइए सुनते हैं

0: Contact The Hindi Show for sponsorship and phone 0413 385 976.
1: Durban Hindi Kaike mein sponsorship ke liye sampark kare phone number 0413 385 976.
2: Are you looking for personal or business tax or self-managed super fund account and audit, formation of association, company or trust? Cloud accounting with payroll solution with fixed prices. Mention Durban Radio and get your first visit without any charge. Please contact Forbes Accounting on 8095 9405, that's 8095 9405, or visit our website www.fabc.com.au. Our address is Suite 1, 168 Burwood Road, Burwood. Forbes Accounting and Business Consultants are proud sponsors of Durban Radio.
3: श्रोताओं, सावन की बात चल रही है और सावन के गीत आप इंजॉय कर रहे होंगे। तो दोस्तों, सावन हमें केवल त्यौहार मनाना नहीं सिखाता, बल्कि जीवन को हरा भरा बनाना भी सिखाता है। ये हमें प्रकृति से प्रेम करना, रिश्तों को समय देना और अपनी लोक परंपराओं को संजोकर अगली पीढ़ी तक पहुँचाना भी सिखाता है। आज भले ही शहरों की भाग दौड़ में झूले कम दिखाई देते हों, लेकिन सावन की पहली बारिश आज भी मन को बचपन की गलियों में ले जाती है। मेहंदी की खुशबू, सखियों की हंसी, कजरी की तान और शिव मंदिर की घंटियां आज भी वही सुकून देती हैं। तो श्रोताओं, कुछ लाइनें, दो लाइनें आपके लिए गाना चाहती थी वेलकम करने के लिए, जो मैं भूल गई, आइए अब आपको सुना देती हूँ। सावन की सब को बधाई श्री राधा रानी,

तो आप सबको एक बार फिर से बधाई सावन की। आइए इस सावन हम एक पौधा भी लगाएं, अपने परिवार के साथ समय भी बिताएं और अपनी संस्कृति की इन सुंदर परंपराओं को जीवित रखें, क्योंकि सावन केवल ऋतु नहीं एक अनुभूति है। हरियाली केवल पेड़ों में नहीं रिश्तों में भी होनी चाहिए। आप सभी को सावन मास की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।

0: Just moved from overseas? Start banking like a local with ANZ. We're one of Australia's biggest banks, and we're chosen by millions. For customers living in Australia, available in English only. Consider if right for you. Eligibility criteria and T&Cs apply.
1: 2OOO's station sponsor.
2: श्रोताओं, ग्लासगो स्कॉटलैंड में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में भारतीय टीम के शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 39 पदक 13 गोल्ड और 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज जीते हैं और पदक तालिका में चौथे स्थान पर जो कि इनका बेस्ट है अब तक का अपना अभिमान ये कल का दिन बहुत अच्छा रहा मुख्य हाइलाइट्स जो है बॉक्सिंग भारतीय मुक्केबाजी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए 7 गोल्ड और 3 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज अपने नाम किए हैं प्रीति पवार जैस्मिन लबेरिया एंड लवलीना बोरगोहेंस जैसे खिलाड़ियों ने शानदार सफलता हासिल की वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने महिलाओं के 48 केजी क्लास में गोल्ड लिया है और राष्ट्रमंडल इसमें जो अभी तक का ऐतिहासिक हैट्रिक पूरा किया है 3 बार इन्होंने किया है जो और एथलेटिक्स और पैरा एथलेटिक्स में दिलीप महादू गाविद ने पुरुषों के 100 मीटर की स्पर्धा में रिकॉर्ड के साथ गोल्ड जीता है जबकि कुलवीर सिंह ने 10 किलोमीटर में सिल्वर और 5 किलोमीटर में ब्रॉन्ज हासिल किया है शर्मिला धनकर ने महिला शॉटपुट में जो है स्वर्ण पदक जीता है तो भारतीय एथलीटों के शानदार प्रदर्शन और पदकों की पूरी जानकारी के लिए आप जो है इनके कॉमनवेल्थ गेम्स वेबसाइट में जाएं
3: बहुत अच्छी बात और भारत के लिए बहुत गर्व की बात है तो श्रोताओं फ़ोन पे जो है साई परस्तु जी हमसे जुड़े हुए हैं जो सेंसस की बातें करेंगे साई परस्तु जी जो हैं वो हिंदू काउंसिल से हैं आपका दर्पण रेडियो पे बहुत बहुत स्वागत है साई जी
4: नमस्ते ऋचा जी धन्यवाद
3: तो आप
4: श्रोताओं को मेरा सादर प्रणाम
3: धन्यवाद और आप बताइए कि सेंसस के बारे में आप क्या बढ़िया जानकारी लेके आए हैं हमारे श्रोताओं के लिए
4: जी यहाँ ऑस्ट्रेलिया में रहते हुए सभी जनों को पता ही होगा हर 5 साल यहाँ पे जनसंख्या का गणित होता है
3: जी
4: और उसमें बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं एक सर्वे है लंबा सा नॉन मैंडेटरी वोटिंग जैसा ये मैंडेटरी नहीं है पर करना जरूरी है क्योंकि ये हमारे भले के लिए है
3: जी।
4: जैसे हम सबको पता है ऑस्ट्रेलिया मल्टी कल्चरल कंट्री है
3: जी।
4: कई देशों से लोग आए हैं यहाँ पे और बस रहे हैं और अपना अपना जो रहन पान वो पूरा जैसे वो रहते थे जैसे वो उनकी संस्कृति सभ्यता है वैसा वो हमको यहाँ जीने का अधिकार है तो इसमें हमारा भी एक दायित्व बनता है कि हम बताएं उनको कि हम कैसे जीते हम कौन है और कहाँ से आए तो
3: क्या आप
4: प्रश्न यही होता है
3: करते हैं लोगों से क्या चाहते हैं कि वो कैसे इस फॉर्म को फिल करें और क्या जानकारी उन्हें जरूर देनी चाहिए
4: जी तो पिछले सेंसस में ये पता चला कि कई लोगों ने एक प्रश्न का उत्तर बराबर दिया नहीं 1 in 3 ने रिलीजन का जवाब नहीं दिया
3: अच्छा
4: जो कि ओवर प्रैक्टिसिंग वो जाते होंगे चर्च में जाते होंगे या गुरुद्वारा जाते होंगे मंदिर जाते होंगे पर उन्होंने बताया नहीं कि वो जाते हैं करके
3: अच्छा
4: तो उससे नुकसान ये हुआ ना वो लोग गणित में नहीं आए
3: अच्छा
4: मतलब यही है कि अगर उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती है
3: जी
4: जो भी आस्था रखते हैं वो पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि सरकार को पता ही नहीं है ये लोग ये है इनको ये चाहिए करके
3: जी।
4: तो ये सबसे बड़ा मुश्किल है जिसको हमें झेलना है इसका सरल उपाय है तीन प्रश्न है जो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे हिंदू धर्म वालों के लिए
3: जी
4: या सभी धर्मों के लिए भी एक तो अपना धर्म बताए रिलीजन विच इज अ नॉन मैंडेटरी क्वेश्चन पर बताए कि वो क्या फॉलो करता है हिंदुइज्म इज ऑलरेडी लिस्टेड इन दैट उनको सिर्फ आपको टिक करना है
3: जी
4: इफ यू आर अ प्रैक्टिसिंग हिंदू इट डजंट मैटर व्हाट प्रैक्टिस इट इज फॉर्मलेस फॉर्मफुल जो भी है बट वी आर प्रैक्टिसिंग हिंदू तो हिंदू से है तो हिंदू करे
3: दूसरा एंसेस्ट्री
4: जी दूसरा क्वेश्चन है एंसेस्ट्री इट्स वेरी कंफ्यूजिंग ये बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है मेरे हिसाब से
3: जी
4: अगर मैं यहां पैदा हुआ हूं ऑस्ट्रेलिया में तो इज माय एंसेस्ट्री ऑस्ट्रेलिया अगर इफ आई एम बोर्न इन इंडिया क्या मेरा एंसेस्ट्री इंडिया है जो कि मैं ये रहता तो यहां हूं सिटीजन ऑस्ट्रेलिया को तो एंसेस्ट्री का सिंपल आंसर यही है कि आप अपने सात पूर्वज देखें सात पुरखों से आप जहां से आए वहां का देखना चाहिए तो कई सारे फिजी इंडियंस से भी मैं बात करते रहता हूं तो वो बोलते हैं कि उनका उनका एंसेस्ट्री इंडिया है उनका हेरिटेज हिंदू है
3: जी
4: तो एंसेस्ट्री इज कई लोगों के लिए हमारे बच्चों के लिए भी उनका एंसेस्ट्री इंडिया ही होता है तो वो एक ना भूले तीसरी है भाषा क्योंकि ऑप्शन है यू कैन हमारी भाषा वहां लिखी नहीं होगी शायद इन द लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस पर हम अदर में लिख सकते हैं कि हम क्या क्या भाषा बोलते हैं तो अक्सर क्या होता है लोग अंग्रेजी लिख देते हैं क्योंकि हम लोग तो यहाँ पे वही बात करते हैं रोज रोज रोज का तो वो अंग्रेजी भी एक भाषा है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो मत लिखे लेकिन वो हमारी भाषा नहीं है हमारी मातृभाषा जो होती है उसका द क्वेश्चन इज अबाउट आवर मदर टंग तो मातृभाषा क्या होती है मेरे लिए तेलुगु है पर मैं तो ये मैं ऐसे लिखता हूँ ये सिर्फ मेरा सुझाव है कि मैं संस्कृत लिख के तेलुगु लिखता हूँ क्योंकि मेरे लिए भाषा सभी भाषा संस्कृत से आया है और वो भी मैं करता हूँ क्योंकि रोज मैं पूजा पाठ करता हूँ तो मुझे संस्कृत में ही पढ़ता हूँ मैं
3: जी.
4: तो मेरे लिए संस्कृत भी है और तेलुगु भी है ये मैं मेरी भाषा बता रहा हूँ सरकार यही पूछती है कि तो उस हिसाब से वो हमारे हमारे लिए प्रबंध करेंगे जो भी हमें भाषा के लिए चाहिए होगा वो
3: जैसे मैं सिर्फ हिंदी भाषा बोलती हूँ तो मुझे हिंदी लिखना चाहिए सिर्फ
4: जी हिंदी लिखना चाहिए और संस्कृत से ही आया संस्कृत भी आप अगर पढ़ते होंगे तो संस्कृत भी अच्छा हिंदी में लिखा जाता है
3: तो श्लोक और मंत्र तो संस्कृत में ही होते हैं तो क्या हमें लिखना चाहिए ये सुझाव के तौर पर ही पूछ रही हूँ कि मुझे लिखना चाहिए संस्कृत कॉमा हिंदी
4: यस
3: जी
4: वो सही रहेगा
3: जी
4: एंड इंग्लिश भी लिख सकते हैं आखिरी में लिखना है तो क्योंकि वो हम बोलते भी है
3: जी तो नहीं चलिए बहुत अच्छा सुझाव है और कुछ आप कहना चाहेंगे सेंसस के बारे में
4: सेंसस के बारे में अभी तो देखिए सेंसस खुल गया है इट्स एन ऑनलाइन सर्वे तो 11 अगस्त को है पर अगर आपके पास समय है तो अभी भी कर सकते हैं आप इट्स ऑलरेडी ओपन तो पर करें जरूर और ये चीजों की ध्यान रखें और सबसे बात भी करें अगर आप जनरली हमारा होता ही है कि हम ऑफिस जाते हैं तो सोमवार के दिन लोग पूछते हैं कि हाउ वाज योर वीकेंड ऐसा कुछ लूज स्मॉल टॉक होता है तो उसमें भी अपने भाई बंधुओं से बात करें कि सेंसस के बारे में और उनको भी ये अपने विचारधारा बताए कि ऐसा ऐसा करना है और क्यों करना है
3: जी,
4: इससे हमारे फैसिलिटीज बनती है हमारे लिए स्कूल्स बन सकती है हमारे कम्युनिटी नीड्स बन सकती है इससे हमारे लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स आएंगे हॉस्पिटल्स में जो इसका इसके परिणाम इसके जो बेनिफिट्स है वो कई सारे हैं तो वो सोचते हुए ये सिर्फ एक सर्वे है इसके वजह से एक स्टैटिस्टिक्स बनेगा ये नहीं है इससे सरकार को एक मिलता है कि डाटा की किसके लिए क्या बनाए हम तेलुगु तेलुगु बात करने वाले ज्यादा है तो इनके लिए क्या कर सकते हैं लाइब्रेरी में पुस्तक बना सकते हैं या क्या क्या फैसिलिटीज दे सकते हैं वो देखने का एक मौका मिलता है
3: यही एक मौका है कि सरकार को हम बता सकते हैं कि जो है ना क्या हम प्रैक्टिस करते हैं और क्या हमारे लिए इम्पोर्टेंट है
4: जी बिल्कुल आपकी बात सही है यही एक हमारा हमारे लिए भी एक मौका है जब हम जाते हैं जैसे हिंदू काउंसिल का एक काम होता है गवर्नमेंट के साथ एडवोकेसी करते हैं हम लोग कि हम बोलते हैं कि हमारे समाज को क्या चाहिए
3: जी
4: जब हम बोलते हैं कि हमें एक ग्रंथालय चाहिए जिसमें हमें पुस्तक चाहिए सभी भाषा के
3: जी।
4: तो स्टैटिस्टिक्स में जाके देखेंगे अगर किसी ने लिखा ही नहीं कि हमारे पास एक भाषा है मैथिली या एक तेलुगु या एक तमिल हिंदी तो वो कहाँ से बोलेंगे वो तो बोलेंगे कि हमारे पास है ही नहीं तो हम क्यों करे करे के ना
3: ये तो ये भी एक प्रश्न होता है बहुत जरूरी बात आपने बताई है जी नहीं चलिए बहुत बहुत धन्यवाद साईं जी कि आपने इतनी अच्छी जानकारी हमें दी जो कि हमारे समाज के लिए समुदाय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद
4: बहुत बहुत धन्यवाद आपका और सारे टीम का दर्पण रेडियो का जो ये कार्यक्रम हर रविवार को लेके आते हैं हमारे सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद
3: नमस्कार थैंक यू तो श्रोताओं आज हम सावन की बात कर रहे हैं तो अभी बीच में बात हो रही थी शोभना जी से और वो कुछ ज़रूरी बात बताना चाहती हैं सावन के बारे में जी शोभना जी
5: थैंक यू ऋचा जी आप जैसे हरियाली तीज के बारे में आपने तीन अलग अलग प्रकार के तीज के बारे में आपने बताया
3: जी
5: लेकिन व्हाट इज़ द ट्रू सिग्निफिकेंस ऑफ द मंथ ऑफ श्रवण ये लोगों को समझना बहुत ज़रूरी है हाँ उत्सव ज़रूर होते हैं ट्रेडिशंस होते हैं लेकिन श्रवण का महीना इज़ द होलीएस्ट मंथ इन द हिंदू स्पिरिचुअल कैलेंडर और इसमें क्या होती है ना रेनफॉल के साथ रिबर्थ होती है फर्टिलिटी होती है तो ये तो फिजिकैलिटी ऑफ द एक्चुअल मंथ होती है लेकिन व्हाट इज दिस मीन फॉर अस हमको क्या करना है तो इस महीने में एक भक्ता को मतलब अपने आप को अपने सेल्फ को क्लेंस करना है
3: जी
5: क्लेंस आप कैसे कर सकते हैं थ्रू डिवोशन जैसे आप शिवलिंग पे आप जब जल चढ़ाते हो या पंचामृत चढ़ाते हो अभिषेक करते हो
3: जी
5: उस भाव से आप अपने माइंड को भी क्लेंस करें अपने कर्म को भी क्लेंस करें और अपने आत्मा को भी परमात्मा से आप जोड़ने की पूरी प्रयास करें सो द होल पॉइंट ऑफ द मंथ ऑफ श्रवण इज अ रीबर्थ फॉर योर सोल अ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर योर सोल
3: क्या बात कही बिल्कुल तो इसे हमें ज़रूर ध्यान में रखना चाहिए नहीं और इस बात को प्रैक्टिस भी करना चाहिए नहीं
5: बिल्कुल.
3: बहुत अच्छी बात चलिए सुनते हैं सावन का एक और गीत जो

0: श्रोताओं हम बातचीत कर रहे हैं मोहम्मद रफ़ी साहब की, उनकी पुण्यतिथि पर उनको याद कर रहे हैं। मोहम्मद रफ़ी की अगर बात कहें तो उनके हर एक गीत जो हैं वो दिल को छू लेने वाले हैं, क्या कहें। मैं ये कह, आपका क्या एक्सपीरियंस रहा शोभना जी, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ आप सुनते हैं उनको?
1: मैं ज़्यादातर फिल्मी गाने नहीं सुनती हूँ।
0: अच्छा,
1: टू बी ऑनेस्ट, लेकिन हाँ, सिंगर तो वो बहुत अच्छे थे, बहुत फेमस भी था। मेरा तो ध्यान ज़्यादातर भजन पे होते हैं।
0: तो उनका भजन आपने ज़रूर सुना होगा।
1: जी, अभी तो याद नहीं है, लेकिन आई लव भजन, और मोहम्मद रफ़ी साहब को भी मैं बहुत बहुत पसंद करती हूँ।
0: जी,
1: मौका मिलता है तो मैं सुन लेती हूँ।
0: जी,
1: सुना भी लेती हूँ, और आज यहाँ मौका मिल रहा है इतने सुंदर सुंदर भजन सुनने के लिए। आपने आपका सिलेक्शन जो है बहुत ही अच्छी है, और श्रवण का भी जो सॉन्ग्स आपने चूज किया, मैं जैसे बोल रही थी ना कि कुछ कुछ गीत तो मैंने कभी सुना भी नहीं।
0: हम वही सोचते हैं कि जो गाने जो है ना बहुत नहीं सुने जाते, उनको भी लाया जाए। तो आपको बताएं श्रोताओं कि बहुत कम लोग जानते हैं कि रफ़ी साहब ने हिंदी के अलावा पंजाबी, बंगाली, मराठी, गुजराती, भोजपुरी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, कोंकणी और अन्य भाषाओं में भी गीत गाए हैं। उन्होंने लगभग 26,000 से अधिक गीतों को अपनी आवाज़ दी। इतनी विविधता और गुणवत्ता शायद ही किसी गायक में हमें देखने को मिली। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया, उन्हें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और 6 फिल्म फेयर पुरस्कार भी मिले। लेकिन उनका सबसे बड़ा सम्मान था करोड़ों श्रोताओं का प्यार। 31 जुलाई 1980 को जब उनके निधन का समाचार आया तो पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। मुंबई की सड़कों पर हजारों लोग उन्हें अंतिम विदाई देने उमड़ पड़े। ये केवल एक गायक की विदाई नहीं थी, बल्कि एक युग की विदाई थी। लेकिन सच तो ये है कि रफ़ी साहब कभी गए ही नहीं। वो आज भी हर रेडियो स्टेशन पर, हर संगीत प्रेमी की प्लेलिस्ट में, हर महफिल में और करोड़ों दिलों में जीवित हैं। वो सुरों का ऐसा दरिया थे जो कभी सूखा ही नहीं, जिसम भले ही चला गया मगर उनकी आवाज़ कभी रुकी ही नहीं। आइए इस अमर गायक को उनकी पुण्य

0: भी दिखाता हूं लेकिन इसके पहले मैं विनर का नाम बता देता हूं जो आज की विनर है मंजू मल्होत्रा सो थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन एंड कांग्रेचुलेशंस फॉर विनिंग
1: भारत माता की जय
2: देश की आजादी मुबारक हो
3: आपको भी बहुत मुबारक हो
4: कौन सी आजादी और किसका मुल्क ये हिंदुओं का मुल्क है हिंदुओं का
3: खुदा के लिए यहां से निकलिए

श्रोताओं इसी के साथ आज का समय समाप्त होता है और उम्मीद है कि आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया होगा। अपनी टिप्पणियां जरूर भेजिएगा ताकि हम बेहतर प्रोग्राम प्रस्तुत कर सकें। शोभना शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद साथ देने के लिए और इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। जी जी हाँ, आप हमारे दर्पण फोरम में हैं तो ज़रूर पूछिए और आगे भी ज़रूर हमसे जुड़े रहिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।